0: रे
1: साला ले बठ थी ना बठ
0: बठ थी ना बठ
1: ले चौक चौक अरे रंग में थुरंग खू मंडे ले coba coba le sekalian lagi le
0: bedetina beda
1: rati.